याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरियतुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गैलवीम सेलसु मैनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා.

याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनि मोक्षं पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।